दिन आवै सो दिन जाही, करना कूचा रहन थिर नाही। संग चलत है हम भी चलना, दूर गमना सिरी ऊपर मरना।

प्रसाद चक्र चीन आभरण जात अर पात नहन जे रूप रंग अर रेख पे कुकैन सगत के अचल।

0: रस राते
1: सुन समाग नाम रस माते
0: आठ पहर जन हर हर जपै
1: हर का भगत परगने छपै
0: हर की भगत मुख

0: पयाउ प्रसाख सैन
1: मुक्त पयाउ बैठ को दैन
0: हे निर्गुण गुण कछु न बूझे
1: बख्श लेओ तो नानक सीजे
0: हे प्रसाद तार ऊपर सुख बसे
1: सुत प्रात मीत बलता संग हसे
0: हे प्रसाद पीवे शीतल जला
1: सुखदाई पवन पावक मूला
0: हे प्रसाद भोगे सब रसा
1: सगल सामग्री संग साथ बसा
0: तीने हस्त पाप कर नेत्र रसना
1: इसे त्याग और संग रचना
0: ऐसे दुख मूड अंध व्यापे
1: नानक काट लियो प्रव्यापे
0: आद अंत जो राखन हार
1: तिसो प्रीत न करे गवार
0: जाकी सेवा नव निध पावे
1: तासो मूड़ा मन नहीं लावे
0: जो ठाकर स सदा हजूरे
1: ताको अंधा जानत दूरे
0: जाकी टहल पावे दरघे मान
1: तिसे विसारे मुगत अजान
0: सदा सदा यह भूलन हार
1: नानक राखन हार पार
0: त्याग कौड़ी संग रचे
1: साच छोड़ झूठ संग मचे
0: जो छड़ना सुअस्त्र कर माने
1: जो हो वंशो दूर पराने
0: छोड़ जाए तिसका श्रम करे
1: संग सहाय तिस पर हरे
0: चंदन लेप उतारे तोए
1: गर्द प्रीत पसम संग होए
0: अंध कुमे पतित विकराल
1: नानक काट लियो प्रभु दयाल
0: पशु की मानस जात
1: लोक पचारा करे जनराल
0: आहार पेख अंतर मल माया
1: शब्द नहीं कुछ करे शपाया
0: आहार ज्ञान ध्यान स्नान

0: सहाई सुहावेन चीत
1: जो बैराइता से उपनीत
0: वाके ग्रह पीतर वसे
1: मंद केर माया नगरसे
0: कर मन है मने प्रतीत
1: कालना आवे भूले चीत
0: गैर विरोध काम क्रोध मोह
1: झूठ विकार महालोत करो
0: याहू जुक्त बिहाने कई जन्म
1: नानक राख लियो अपन कर कर्म
0: ठाकर तुम पे अरदास
1: जियो पिंड सब तेरी रास
0: मात पिता हम बारग तेरे
1: तुमरी कृपा मैं सूर कनेरे
0: कोई न जाने तुमरा अंत
1: ऊंचे ते ऊंचा पखवंत
0: सामग्री तुमरे सूत्रता।

0: छाया सो रंग लावे
1: से मन पछतावे
0: जो दिसे सो चालन हार
1: लटाऊ
0: सो जो लावे ने
1: ताको हाथ नावे के
0: मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई
1: कर कृपा नानक आप ले लाई
0: मिथ्या तन धन कुटुंब सुबाया
1: मिथ्या होवे ममता माया
0: मिथ्या राज यौवन धन माल
1: मिथ्या काम क्रोध विकराल
0: मिथ्या रथ हस्ती अवस वस्तरा
1: मिथ्या रंग संग माया
0: मिथ्या त्रो मोह अभिमान
1: मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान
0: अस्तर पग

0: शास्त्रपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप
1: जैसे जल में कमल लेप
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख
1: जैसे सूर सर्प को शोक
0: ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान
1: जैसे राज रंग को लागे तुल भवान
0: ब्रह्म ज्ञानी के तीर जेक
1: जो मस्ता को खोजे को चंदन लेप
0: ब्रह्म ज्ञानी का ये गुनाऊ
1: नानक यो पाप का सहज स्वभाव
0: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला
1: जैसे मैल न लागे जला
0: ब्रह्म ज्ञानी के मन होए परगास
1: जैसे तारु पर आकाश
0: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सतर समान
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान
0: ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा
1: मन अपने है सब ते नीचा
0: ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे
1: नानक जिन प्रभाव करे
0: ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना
1: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी जीना
0: ब्रह्म ज्ञानी की सभी ऊपर माया
1: ब्रह्म ज्ञानी ते कछु बुरा न पाया
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
1: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृतवासी
0: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता
1: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल ज्योता
0: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ज्ञान
0: ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपरास
1: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं नास
0: ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाहा
1: ब्रह्म ज्ञानी परोपकारो महा
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाही तंदा
1: ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा
0: ब्रह्म ज्ञानी के होए सो पन्हा
1: ब्रह्म ज्ञानी सफल फला
0: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार
0: ब्रह्म ज्ञानी के एक रंग
1: ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभु संग
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत
1: ब्रह्म ज्ञानी अहम त्याग
0: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद
1: ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद
0: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
0: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा
1: ब्रह्म ज्ञानी एक संग लेता
0: ब्रह्म ज्ञानी के होए अचिंत
1: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र
0: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव्याप
1: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप
0: ब्रह्म ज्ञानी का दर्स बड़ पागी पाइये
1: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए
0: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
0: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही
1: ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन मारे
0: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने पिंड ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाय दाखर
1: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर
0: ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने
1: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
0: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
0: ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता
1: ब्रह्म ज्ञानी सजीव नहीं मरता
0: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त युक्त जी का दाता
1: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता
0: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ
1: ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ
0: ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार

0: कर बोते
1: कोट आत्म त्यान तारे
0: कई कोट का काम विचार है
1: कोट नाम तन नाम त्यावे
0: नानक करते का अंत न पावे।

कई कोट पुत्रे सुकरनिराज नानक आपन पतिया भरपूर कई कोट नरक स्वर्ग निवासी।

0: बख्यान
1: प्रभु मोहन तारी लावे ध्यान
0: कर तीर्थ स्नान
1: प्रभु सिद्ध साधक मुख ज्ञान
0: पीठ हस्पतंग होए जिया
1: मन के जोन भर में भरमिया
0: नाना रूप जो स्वागी दिखावे
1: जो प्रभावे तिवे नचावे
0: सुभावे सोई होए
1: नानक दूजा अवर न कोए।

0: समाया।
1: सोदत सोदत सोदत सीजिया,
0: गुर प्रसाद तत सब बूझिया,
1: जब देखो तब सब किश मूल,
0: नानक सो सुखम सोई रसूल,
1: नह किस जन्मे नह किस मरिया,
0: आपन चलते आप ही करे,
1: आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट,
0: आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ,
1: आपे आप सगल में आप,
0: अनंत जगत रच था प्यो थाप,
1: अविनाशी नाही।

0: जिसके कर्तव्य थे जात, सर्व जिया का रखा सोए,
1: सोच करे प्राणी
0: जप नानक प्रभु लख विडाणी,
1: बार बार प्रभु जपिए
0: ती अमृते मन तंत्र पिए,
1: नाम रतन जन गुरमुख पाया
0: इसके शबद नाही निष्ठाया,
1: नाम तन नाम रूप रंग
0: नामो सुखर नाम का संग,
1: नाम रस जो जन तृप्ताने
0: मन तन नामे नाम समाने,
1: उठत बैठत सोवत नाम
0: ओ नानक जन के सद का।

0: मन में रखे हर हरि
1: दीपक प्रगासे
0: नानक पद मुक्त
1: तप्त महे ठाड वरताई
0: नानक

0: भजन सुने सब वचन
1: सर्वव्यापी राम संग रचन
0: जिन जाता तिस की एह रहत
1: सत वचन साधु सब कैद
0: जो जो होए सोई सुख माने
1: कर्म करावन हार प्रभ जाने
0: अंतर बसे बाहर पी ओही
1: नानक दर्शन देख सब होही
0: आप सत किया सब सत
1: इस प्रभ ते सगली उत्पात
0: इस पावेता करे विस्तार
1: इस पावेता एक ओंकार
0: अनक कला लखी नह जाए
1: जिस पावे तिस लय मिलाए
0: गवन निकट गवन कहे दूर
1: आपे आप आप भरपूर
0: अंतर्गत जिस आप जनाए
1: नानक तिस जन आप बुझाए
0: सारा भूता पर तारा
1: सर्व नैन आप खनहारा
0: सगल समगरी जा का तना
1: आपन जस आप ही सुना
0: आवन जाने के खेल बनाया
1: आज्ञाकारी कीनी माया
0: सब के मद अलप्त रहे
1: जो कुछ कहना सो आपे कहे
0: आज्ञा आवे आज्ञा जाए
1: नानक जा पावे ता लय समाए
0: इसते होए सो नाही बुरा
1: बुरे कहो किने कश करा
0: आप भला कर तू ता तनीकी
1: आपे जाने अपने जी की
0: आप साच तारी सब साच
1: ओत पोत आपन संग राज
0: ताकि गत मित कही न जाए
1: दूसर होए ता सोची पाए
0: इसका किया सब परवान
1: गुर प्रसाद नानक हो जान
0: जो जाने ते सदा सुख होए
1: आप मिलाए लए प्रभ सोए
0: धनवंत कुलवंत पतवंत
1: जीवन मुक्त जिस हृदय भगवान
0: धन धन धन जन आया
1: जिस प्रसाद सब जगत कराया
0: जाना अवन का यह सुआओ

जग अमर अटल अतोल ठाकुर भगत ते हर पाया हर पहना गुर पाया गुर जावै हर प्रपास जियो सतगुर करे हर पै बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो।

संत हो सब जगत पैरी पाए जियो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु। वाहिगुरु साहिब जी राम कली महला तीजा आनंद। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अनंत आया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तपाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गावणाइयां शब्दो मेरिया। तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे रूप सब विसारना अंगीकार ओ करे तेरा कार्य सब सुवारना सब नाम गल्ला समरत सुवानी। सो क्यों मनहो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही कर तेरा करता तेरा सब किश है जिस दे ही सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसिया। वाजे शब्द अनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा। साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। कर शांत सुख मनवाए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विट्टो जिस दियां ए वडियाइयां। कह नानक सुनो संत हो सब धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित कर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला जित घर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया